0: 消息称，截止到当地时间的2号的18点，该国泥石流受灾地区已经发现了1204具遇难者的遗体，另外有4216人失联，包括多处的水电站项目当中的900名工人。尼泊尔总理沙阿称，灾害敲响了气候风险的警钟，呼吁全球共同应对气候变化。有失踪人员的家属在首都加德满都的神庙为亲人举行象征性的丧葬仪式。
1: 在尼泊尔努瓦果德县灾区，救援队伍投入直升机投送救灾物资，利用索道转运受困民众，出动搜救犬、挖掘机。尼泊尔军队继续对据信被困在水电站隧道内的失踪人员进行搜救行动，希望能在一些未被洪水淹没的地区找到幸存者。受道路桥梁损毁影响，部分高海拔灾区通行条件恶劣，搜救工作推进缓慢。面对严峻灾情，尼泊尔总理沙阿在议会发表讲话，呼吁国际社会正视尼泊尔等山地国家面临的气候威胁。
2: यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नु परेको जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ। त्यसैले हामी त सचेत हुनै पर्छ। सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपदबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो। यसको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको बुझिएको छ।
1: 随着搜救时间不断拉长，部分失踪者生还希望渺茫。有家属来到首都加德满都的帕苏帕蒂纳特神庙，依照印度教习俗焚烧稻草人替身，为无法寻回遗体的亲人完成最后的仪式。有部分家属持续关注搜救动态，期盼能够得到亲人的相关消息。凤凰卫视综合报道。
0: 新黄冈口岸即将启用，这座全球最大的陆路口岸正在拉动周边的房地产的市场活跃势头，租金和房价都双双的上涨。而同时呢，口岸联动河套合作区将会进一步的重构深港边界的经济版图。我们来看新黄冈口岸系列报道之房地产篇。
3: 现在所在的这个小区，通过窗户肉眼就能够看到新黄冈口岸。那么像这样一个大约55平方米两房一厅的户型，月出租价格是在6500元左右。据相关地产从业人员介绍，像类似这样的空房间，一天可以迎来6波看房客，仅3天就能够成交出租。
4: 新黄冈口岸以一地两检的模式将通关时长压缩到5分钟，极大便利了两地人员往来。附近地产中介指，周边房产深受深港跨境通勤人士青睐，距离口岸最远的小区步行仅15分钟，最近的小区步行仅2分钟，意味着出关口即可回家。
5: 目前有60%左右的深港跨境人士在这边居住啊，类型的话呢，分为这个港硕的以及这个跨境孩童，还有在香港两地上班的人员啊。那么他们人均的租金大概在3500左右，对比香港的租金的话，还是性价比比较高的。
4: 据地产中介数据，越临近新黄冈口岸启用时间，附近小区的租金越应声而起，最高涨幅达到了12.1%，由原来的5800元上涨至6500元。新黄冈口岸初期每日可承载约20万人次跨境，业界预计跨境通勤、就近居住需求强劲，租房市场韧性足。
6: 这个是新黄冈口岸，然后这个小区离口岸非常近，那么现在基本就是一房难求的情况啊。你像小区现在有些租客马上到期，还没到期的时候就业主提前放租，然后紧接着就会有客户来看房，然后继续住在里面，基本上没有出现带出租的情况。
3: 没有出现空房带租的情况。
6: 对。
3: 那现在租房市场受到香港人的影响变得如此之火热，会不会有更多的港人选择在这里买房呢？
6: 会有的啊。